त्रयस्त्रिगुंसच्च च त्रयस्त्रिगुंसन्मे मे त्रयस्त्रिगुंसच्च त्रयस्त्रिगुंसच्च च त्रयस्त्रिगुंसत्रयस्त्रिगुंसच्च मे मे च त्रयस्त्रिगुंसत्र

चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिर्मे मे चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिश्चतुर्विपुंसतिश्च मे मे चतुर्विपुंसतिश्चतुर्